0: गिलास तुम कुफा भी
1: आई पिरेने नॉन रिसान अलोम बाउला फांतरफा ना विताज ना विताबे आर्ट्स नंगाल रस ना वाफ्त वेंतियाज ताऊनी किताब मुबुला पंजाकन आरिट्स इन्वार्ट तंद्रा जा ना कन्नी तन कोलो निशासनी ममेर नं तन कोलो वन कोलो मकंतन मलगाश अमी दम कोलो वही सिक्ती जा मंगता कन्नी इल्जे पार्स चीज ना नंपिया तम जान फ्टों जान ना इर्रायज ना सिंडिकायु ना पार्टी पॉलिटिकियु ना उल्सुर जो वो बोबीज़ मिटेन हुए हाँ अंकता ना तकीना इल्जे पार्स ऐफा स्टारलोर कन्फा एला बेजेट्स